रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। RJ's

दोस्तों दोपहर के 12:30 बजे तक हम हर इन द स्टूडियो, आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं। जी हां, रेडियो चुनार को अपनी आवाज बनाए। 9999904 इज द नंबर। जगसूस के साथ मजदार शो सबसे हक।

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम।
1: दोस्तों, रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्स, आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो। व्हाट्सएप फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चनार के ऑफिशियल हैंडल्स को, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, सिटी हट दरगाह।

0: 꺼놔요. Bad boy of radio 꺼놔요. All Jesus bit it 꺼놔요. Bad boy of radio 꺼놔요. All Jesus 꺼놔요.
1: 라디오 진아, 라디오 진아, weather update, weather update.
2: Radio Channel की hottest frequency पर मेरे brother आज का weather.
1: Radio China, Radio China, weather update, weather update.
2: जी हाँ, कल की तरह आज भी टेम्परेचर में राहत. कल भी 30 था, आज भी 30 रहेगा टेम्परेचर.
1: Radio China, Radio China, weather update, weather update. Radio China, Radio China, weather update, weather update. Radio China, Radio China, weather update, weather update.
2: गरज बरस की संभावना दोपहर होते होते देर चांस के बादल भी हल्की फुल्की जी हाँ बरसात कर देंगे. यूवी इंडेक्स अभी के लिए स्ट्रांग पर. विंड स्पीड 5 किलोमीटर. विजिबिलिटी 14 किलोमीटर. जी हाँ, सनराइज की बात करें तो 5:48 पर और सनसेट जी 7:47 पर होगा. इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM सिटी हर्ट. मेरे यार दरगाह दे रहा

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप में आइए बात करते हैं स्काईवॉकर्स की, जिन्होंने जिनको नेटफ्लिक्स ने फीचर किया 2024 में एक डॉक्यूमेंट्री, और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था स्काईवॉकर्स लव स्टोरी। अब कल से ये चर्चा में है क्योंकि इनको पर्चा मिल चुका है NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़कर एक दूसरे को प्रपोज करते हुए पकड़े गए। साथ में एक पोस्टर भी फैलाया था, पोस्टर भी आया लिखा था वो तो रोस्टर में आ जाएगा, लेकिन ये जो प्रपोज करने का स्टाइल है वो भी 1454 फीट ऊपर जाकर एक दूसरे को प्यार का इजहार कर दिया और नीचे लाए ने NYPD ने, और उसके बाद जंजीरों में कैद दिया इन प्यार करने वालों को। लेकिन पते की बात ये है कि कल से ये वायरल है, ट्रेंडिंग है, एंड वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट देम कि क्या लव स्टोरी है बस। रेडियो चुनाव 90.4 FM, मैं हूं जॉक्स रिएक्ट।

0: आरजे ज्यू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: रेडियो चुनाव 90.4 एफएम मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, लाइफ इज जस्ट व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। और इस फ्रीक्वेंसी जस्ट सिटी हिट दरकाते रहो।

0: Cómo la veo.
1: Dios.
2: Yeah, the story that you know, he heard a streak and see, but I must ask you what's up. मैं हूं जलसूस और दोपहर के भाई पछताने आप जुड़े हैं मेरे साथ. जी हाँ, हम हैं आप और समारंगीन समझ गए ना डो नो नो. और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं साहिल. लिखते हैं साहिल के सर, मैं बैंक में काम करता हूं और सुपोर में ड्यूटी पर हूं और रेडियो चैनल सुनता हूं. थैंक यू सो मच दोस्त, सुनते रहे, प्यार देते रहे. शाहीन हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं शाहीन जी, एक टीचर हूं मैं और मुझे लगता है रेडियो चैनल में आज की डेट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सोशल मीडिया से बहुत बेहतर है. थैंक यू सो मच. वैसे सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं, तरह तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेडियो चैनल पर, डिफरेंट इंटरेक्शंस, गेस्ट का आना, किसी का जाना, किसी का बहलाना फसलाना, सब तरह के वीडियोस आपको मिलेंगे. इंफोटेनमेंट से लोडेड है हमारा सोशल मीडिया, तो फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. शाहीन जी आपका शुक्रिया. आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर, मजेदार शो का हिस्सा बन सकते हैं. 8899904904 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से शुरुआत हो चुकी है श्री अमरनाथ जी यात्रा, और पहला जो यात्रियों का जत्था है दैट हैज ऑलरेडी स्टार्ट द होली यात्रा, और पहलगाम से भी और बालतल से भी ये जो यात्रा है पूरी की जा रही है. ऑफिशियल्स की तरफ से आग्रह किया जा रहा है, जो भी यात्री वगैरह है वो यात्रा में सेफ्टी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसे प्रायर करें, और जो ऑलरेडी डिसाइडेड बैंक ब्रांच है वहाँ पर जाकर वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है एडवांस में करा सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मौके पर जाकर ही तत्काल रजिस्ट्रेशन कराएंगे. देखिए, समझने वाली बात है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है तत्काल भी मौजूद है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो मजबूर हो जाते हैं. थाउजेंड्स ऑफ यात्रीज या जो यात्रियों का जत्था आता है उन सबकी तत्काल रजिस्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं है. और एक कश्मीरी दिल से वेलकम कर रहा है सभी यात्रियों का. आपको बता दें कि यात्रा जो है शुरू हो चुकी है और हर एक यात्री ट्रैक पार करने वाला है 3,880 मीटर हाई जाकर इस होली के में शिवलिंग के दर्शन करेगा. और यात्रा को स्मूथ बनाने के लिए जो भी रूल्स

रेगुलेशन से उन्हें फॉलो जरूर करें। और रही टॉपिक की बात, तो आज हम बात कर रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 की। रुद्रमाला वैरा और इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं आरजे ज्यूस। आज बात होगी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026, क्या है प्रोटोकॉल्स, क्या है परसेप्शंस, क्या आप सुनना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं। अभी 7899904904 इज द नंबर। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव से रेहट मेरे यार धड़का दे रहा।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

दोस्तों रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक्सियस और हमारे साथ जुड़े हैं जाकिर। देखते हैं जाकिर के। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ इज यू? आई होप आप ठीक होंगे। दोस्त वालेकुम सलाम और पूछने के लिए शुक्रिया। ठीक है हम, और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक ही होंगे। देखते हैं रेडियो चैनल एस्टेब्लिशमेंट से अब तक जुड़ा हूँ और आपका रेगुलर लिसनर हूँ जाकिर फ्रॉम सोपोर खुशहाल स्टेडियम से। बिल्कुल हमें याद है जाकिर, आप हमसे जुड़ते रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। और लिखते हैं कि मैसेज फॉर कश्मीरीज के दिल से रेस्पेक्ट करो यात्रियों की, क्योंकि कश्मीरी लोग आपको वर्ल्ड में मिलेंगे तो उनमें 10 टाइम्स क्वालिटीज़ है, वो है इंसानियत। जी हाँ, कश्मीरी जाने जाते हैं अपने लव के लिए, अपने केयर के लिए, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। सो यस, बहुत ही खूब कहा जाकिर ने कि जो भी यात्री वगैरह आ रहे हैं हमें दिल से उनकी रिस्पेक्ट और वेलकम करना चाहिए। दोस्तों आप भी जुड़े हमारे साथ, अपनी बात हम तक पहुँचाए 8899904904 इज द नंबर। मैं हूँ जॉक्स, रहो।

Thank you. Thank you.

होने की पर आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। ना करना चाहूं पर बातों में अक्सर तेरे ही किस्से निकल आते हैं। दिल कहे मेरा उसे प्यार करना छोड़ दे, सेम टू सेम जैसे हो गई छोड़ के। चल लेता कर मेरा जो भी तेरे कोल लाके, सब कुछ मैनू मेरा मोड़ दे, मोड़ दे। चल चल चल चल चल चल चल लेता कर मेरा जो भी तेरे कोल लाके, सब कुछ।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

भाई शर्मीली वाह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल का सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की

0: चनिया चोली वाह मीठी बोली वाह
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट द लैंड ऑफ कल्चर द लैंड ऑफ ड्रीम्स दिस इज द लैंड ऑफ यू एंड मी
0: राजे शिवाजी वाह अकबर बादशाह वाह महात्मा गांधी वाह चाचा नेहरू वाह बाबा अंबेडकर वाह मदर टेरेसा वाह
1: वी आर टेकिंग इट अप एंड वी आर टेकिंग इट डाउन दिस इज द इंडियन साउंड टुगेदर सो स्ट्रांग इन गॉड वी ट्रस्ट yeah you cannot beat us
0: taj mahal baba char minar baba aam ka achar baba yahan ka pyar baba aishwarya rai baba sushmita sen baba all india radio baba dd metro baba doordarshan baba yahan ki army baba yahan ki navy baba
2: aur is frequency par aap sun rahe hain mazdar show was up व्हाट्सएप शो में मैं हूं आपके साथ ही आरजे सिंह और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश आई फील गुड
3: जहां से अच्छा
2: एक वेस्टर्न म्यूजिकल शो जो हम ट्यूसडेज और फ्राइडेज अब तक पहुंचाते हैं सो स्टे हुक्ड द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी धड़काते रहो
3: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते

0: Turn music with me, RJ Zeus.
1: Let me be your hero. Would you dance?

देखिए गलियों में तो हम आ चुके हैं और आज बस थोड़ी सी बातें और डिवोशनल म्यूजिक भी आप तक हम पहुंचाएंगे चलाएंगे बराबर 12:30 से 2 तक आप यहाँ पर नशीद नादिया कलाम सूफी कलाम सुनेंगे। तो सुनना ना भूले, शो चुनार भी सब सुन रहे हैं और रेडियो चुनार पे आप हमारा साथ दे सकते, कुछ कहना चाहते 8899049904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार भी इसका हिस्सा बन जाए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: जुम्मतुल मुबारक, रेडियो चुनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नात रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक। रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाई मैम मास्टर, आप सुन रहे हैं शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुना 90.4 FM, और बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बातें और भी होंगी. टॉपिक क्या है, अपडेट्स क्या है, क्या ट्रेंडिंग है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ. Enjoy your back-to-back tracks only on Radio Sonar 90.4 FM.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। और अभी वक्त है रेलवे अपडेट का, और आज की अपडेट यही है कि हर कोई ट्रेन इज शेड्यूल्ड एज पर द समर टाइम टेबल एंड यू कैन अवेल द समर टाइम टेबल द ऑफिशियल इंडियन रेलवे एप्स दैट इज रेल वन। चाहे ट्रेन बिटवीन स्टेशन हो, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन, कौन सी ट्रेन एग्जैक्टली कहाँ है, और आप अपनी जर्नी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड। अब देखिए, अपडेट तो हो गई, पर एक और चीज है जिसके बारे में बात हो रही है, एंड दिस इज गोइंग ऑल ओवर द इंटरनेट। एक ऐसी मूवी जो लगभग 10 साल पुरानी है, एंड जो लाइक ऑनेस्टली देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो अबाउट दिस मूवी, बट इस मूवी के जो ट्रैक्स हैं वो सब जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली 6 मूवी की, जहाँ पे अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर साथ में कास्ट थे, और द म्यूजिक आई मस्ट से मसाकली हो, अर्जिया हो, और ये सारे ट्रैक्स जो इसी मूवी से हैं आइकॉनिक, बट द मूवी जो है वो उतना कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। बट अभी रिविजिट कर रहे हैं लोग, और स्पेशली सोनम कपूर के कैरेक्टर को काफी प्रेज मिल रही है। देखिए, दिल्ली तो नहीं, ये तो रेडियो सुनार है, आपका प्यार है और आपके विचारों

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।
1: दुनिया में प्यार जब बरसे ना जाने दिल ये क्यों तरसे, दुनिया में प्यार जब बरसे।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। And this is just a reminder that you can be the part of the show. 8899-904-904 is the number you can call, message, text, WhatsApp, or win sakte is hottest frequency ka hottest sa. Main hoon Azra, sunte rahiye Radio Sunar 90.4 FM.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। और आज हम बात करने जा रहे हैं, देखिए हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक है, और आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कमिटमेंट इश्यूज कहते हैं। देखिए आजकल जो भी रिलेशनशिप्स हो, और यूजुअली कमिटमेंट इश्यूज, आज ये टर्म सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के साथ जोड़ा जाता है, बट अगर स्पेशली बात करें तो कमिटमेंट इश्यूज सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं बल्कि करियर पाथ को डिसाइड करने में भी तकलीफ देते हैं बहुत सारे लोगों को, और अपनी जो लाइफ के मेजर डिसीजंस होते हैं आप उन पे स्टिक नहीं कर पाते। आप ये नहीं कह पाते कि भाई अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं इस डिसीजन को पालू भी। और एक्चुअली क्यों होते हैं कमिटमेंट इश्यूज? एक इंसान ऐसा क्यों महसूस करता है कि मैं एक चीज़ डिसाइड, मतलब मैं अपना वजूद किसी एक ही चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे ज़रूरी है कि आपके लाइफ में जो आप डिसीजन लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या वो आपके करियर से रिलेटेड हो, यू हैव टू हैव अ गोल, यू हैव टू हैव समथिंग टू स्टिक ऑन। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM। Inside.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए इनके नाम कुछ भी हो, हमारा तो आरजे असरा है और रेडियो सुनार पे हॉरर फ्रिक्वेंसी है ये, और शो हंगामा, ड्रामा, इन्फॉर्मेशन क्या क्या नहीं है यार। बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप भी शो का हिस्सा बने। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप बन सकते हैं हॉरर फ्रिक्वेंसी का हिस्सा। मैं मोस्टर शो हंगामा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. और जैसे कि हम कमिटमेंट इश्यूज के बारे में बात करें तो एक्चुअली रूट कॉज क्या होता है, ये होता है कि कैसे हम इंसान हमेशा वैलिडेशन ढूंढते हैं और जब हमें ऐसा लगता है कि शायद आगे वाला जो इंसान है, चाहे पार्टनर है या करियर है, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें इसमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, तो हम किसी को कमिट ही नहीं करते. इसके अलावा हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी एक ही चीज़ के साथ, एक वो ऑटोनॉमस बिहेवियर जो हमारा होता है, एक खुद मुख्तियारी जैसे कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी. इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ एक डिसीजन लूंगा तो शायद बाकी चीज़ों जो मेरी लाइफ में है वो मुझसे मिस हो जाएंगी, जिसे हम फोमो कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट. इसके अलावा सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट रहता है कमिटमेंट इश्यूज का, दैट इज पास्ट ट्रॉमास. हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा

एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स डिवोर्सी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो दिमाग में रहता है कि अगर मेरे पेरेंट्स साथ में नहीं रह पाए तो शायद ये गलतफहमी उनके दिमाग में हमेशा रहती है कि शायद ये चीज़ दिमाग में रहती ही है कि कैसे डिवोर्स की वजह से शायद हमें भी वो पार्टनर ना

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Three songs.

0: आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Jeremy. Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Radio Chinar. Radio Chinar. Three songs.

0: थी असरा, हंगामा होगा तब।
1: असरा आ गई तो
0: करो हंगामा आज असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे,
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
0: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
0: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे,
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM.
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

ओके तुम आ रही हो, मैं जाऊं। लगता रूम में रह गई।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही

0: कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: तभी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: इस फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम,
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
0: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshi Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Radio Chinar. Radio Chinar. Three songs back to back.

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

दिन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार
0: पांच
1: लेकिन एक बार

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूं, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहां तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे कहिए ना।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: करार। ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर, क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूँ न आए करार।
1: हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: चिंगी शोर बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना, ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना, हाय।

0: के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हमके वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।
1: इतनी सी बात न समझा जमाना।
0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।

0: यूं ही साथी
1: बंधी मुट्ठी लाख की
2: और पीड़ित चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।